0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा स्वास्थ्य परीक्षण।
1: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर साजन बराल। बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर दुर्गा मिश्र। दक्ष प्राविधिक द्वारा दैनिक फिजियोथेरापी। 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी।
0: थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0564143777 र 98564343। तनहु सेवा हस्पिटल, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4, बेपी चोक।